0: Dylan gutta guts esse Paul Beton he in hi tu ekha gutta
1: ju te ala uta na hone ta ko wore te ko ga lu sine la ki cha na uti ko ga khara thia na hi cha na che te ga tho ko li ye ki na te go sa a te ta ra ti da ju te ye ke lu ne a ke ta si chaung ta so ta ki an na ka go te ga pe tha ke na che te ang da ko ate tara tinda na sina ta kha ti ba ha si wa on la ti ba ita ke na tenda ate tara ti ha yu sin la he chana u ti la ho ju ti ga la tan da na si yu sin la he chana u ti la ho ko ta ate ga na tara ti ha na kyo tra yo da ha e che so ta si ko ti na so ta na ga ni o खाने को ले इसे देखा जाए तो कोगा ना शिरा को ले ये लागू था खाने को ले तेरे चोटा ने वो को जाए तो इन्हें से अरे यार ने तो ने तो खोने नो देखो जाए ऐ तो इतने तो ने ताना को गुने तो ना शिरा चोटा ने का हरी चिंदा मासिवा ना शिरा चोटा ने वो चिंदा इंगा के जियों जरा जो इसने को जो Then no kwe kwa, to ten kwe kwa na ke chan de, masi o le kwa. Are yone, zon ta re, cho te na kane, te zon ta na go go te. Isi, are yone, ye ten de ta, ten de kone a zin, ten de kwa na di se, we kwa, ki ga, ten de ga ha, ki ga ha, ten de tin de, si re masi o. E kane, kwa ta di, e che go di, ta, ki, zon ta na go, ka du si ne kwa, ta, si re masi, zon ta na, du ta re, cho kwa te, li si, ye ten na re, yone go yi te, li si, si re masi. Are yone, yu zi, You know, it's in the heat. ऐसा ना तेले से ये बोला ने वैसे ने ना वाये के यहाँ ठेका तने सोको हुई ले जाले चीज़ से ने बे लोगों से को वाये लाऊं ताते ताते बे उसा ये ता ऐसा ना तेले से सुई ता सी ने जों ताते आमे ये ता तो तेरे सो चना इतने दे सुई बे ता बे ता खाने से वो आते आते ये उनको दे ता को तो रे आले ता ऐसा वो का तेले आते ये से सुई दिए ता ऐसा वो कहते लहात इतने जो सिंटन सारे तो ताने तेरे ने कहते हुए कोई ना क्यों रह जाता इतने चिनाब ऐसा को ताकाने सारा दिल इतने